0: अज मेरे बेटे की पहली बर्थडे पार्टी है, दिल खोल के खर्चा किया है।
1: बहुत बढ़िया यार, पर एक गल दस, तू अपने बच्चे की RESP करवाई है?
0: नहीं तो
1: भाई, RESP तोड़े बच्चे की सुरक्षित भविष्य की चाबी है। आज ही ऑल काइंड इंश्योरेंस तो गुरजीत सूरी नु कॉल करके RESP करवा। इना कोल क्रिटिकल डिसेबिलिटी ते स्टूडेंट इंश्योरेंस दे बेस्ट प्लान।

0: होलसेल क्लब विच कीमता कठोरियां
1: अल्ला नालो भी कट
0: ए देखो 13.6 किलो सनस्पन स्ट्रेट कट फ्राइज सिर्फ $33 99 सेंट विच
1: ये तो होर भी कट है
0: साडे बेसमेंट दे वाईफाई सिग्नल तो भी कट
1: ओए तू किथे जा रही है
0: अपने बिजनेस लाई पैसे बचाओ
2: तो हडे बिजनेस लाई पैसे बचाना साडा बिजनेस है इसलिए असी कई आइटम्स दीयां कीमता कट कर रहे हां कोई फीस नहीं हो जानकारी ले wholesaleclub.ca देखो
3: होलसेल क्लब होल लॉट ऑफ वैल्यू
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं पता तुसी सारे की ये कविता बहुत अच्छी लगी है क्योंकि है बड़ी अच्छी बड़ी मीनिंगफुल है। पर इस कविता के माध्यम कला मैं स्नेहा देना चाहनी हाँ साढ़े पढ़े लिखे समाज जो अज भी कुड़िए ते मुड़े च भेद करते हैं। अज भी अगर उन्हें पता लगी आ कि ये कुड़ी होने वाली है तो मिनट नहीं लाते उसी खत्म करने च। अज भी कोई ना कोई टब्बर ऐसा है जिथे अज भी मत्थे टेके जाते हैं कि कुड़ी नहीं हो तो मुड़ा हो। अज बड़ी तरक्की भी हो गई है तो बड़े सारे परिवार एक एग्जाम्पल भी सैट करते हैं उन्हें कुड़ियों के जमने पर बड़ी खुशी मनाई जाती है बड़े अच्छे तरीके करने सैलीब्रेट करिए समाज ही सुनेहा भी देंगे दें। पर फिर भी बिलीव मी अज भी उ लोग हैं जो पढ़े लिखे दिन पर फिर भी कुड़ियों तो मुड़ियों भेद करते हैं तो हमेशा उम्मीद करते हैं कि उनके घर मुड़ा के जमे कुड़ी नहीं हो।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज गल करा दे है दुग्गर प्रदेश दी धीए दी, धीए ते मुड़े झोने वाले भेदभाव दी। मैं आ तुंदी आर जे डोगरे दी धी नी। हाँ, मेरा ट्विटर अकाउंट है डोगरन सोल करने, तुस उत्थे मैं फॉलो करी सकते हो। ते अगर अज दी धीआं अगर झांसी दी रानियां ते ओह सती ते सवित्री दा भी किरदार हन, हर तरह दा एक मल्टी रोल प्ले कर दियां अज दियां धीआं। ते मैं तां गई इस रेडियो दे माध्यम तुंदे सारे कोला फिर रिक्वेस्ट करना चाहनी हां कि कुड़े ते मुड़े च बिल्कुल भेदभाव बंद करिए, उन्हें बराबर दा दर्जा देइए। ते उन्हें तुस ये मेरा स्नेहा अगे भी शेयर सारे जरूर करियो। ते हुण मैं इजाजत दियो, मेरे जाने दा टाइम होई है, फिर मैं परतिए मिलगी तुंदे कन्ने एक नवी और कोई पेशकश दे कन्ने। बाय बाय।

0: और किस्ती पड़ी कोई कल?
1: होए शम्मी पठल होरानल हो गई गल, कार लेके देन तो अलावा डाउन पेमेंट ते मॉर्गेज दा भी मसला करनगे हल।
2: रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदन वेचन या इन्वेस्टमेंट लई याद रखो भरोसे ते विश्वास वाला कम्युनिटी दा जानिया पछाणिया नाम शम्मी पठल। तुहाडियां लोड़ां मुताबिक वधिया लोकेशंस ते बेस्ट प्राइस ते घर आसानी नाल लेके दिंदे ने। रियल एस्टेट ब्रोकर शम्मी पठल, आज ही कॉल करो 416-917-7763 416-917-7763।

0: रात में छड़ दिनी आ पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर जेडे करदे ने मेरी कार दी केयर बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर
0: ए होई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी
1: जी हां कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रका दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है फ्लीट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878
2: भाई ये ट्रक ता हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया हुण सोचदा वे कोई यूज ट्रक ही लै लवां पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां
3: ओ इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखू नूं कॉल कर ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं
4: जी हां जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड है ते तुहाडी पसंद दा मेक इन मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेटन एवेन्यू ब्रैम्पटन कॉल बिल सेखो 416-819-6000
5: जे तुसी जॉब दी भाल कर रहे हो ता कैन ट्रक नू कॉन्टेक्ट करो थोड़े कोल एजेड लाइसेंस होना चाहिदा है थोड़ा CVOR बिल्कुल क्लीन होना चाहिदा है 2 साल दा एक्सपीरियंस वी होना चाहिदा है कॉन्टेक्ट लई नंबर है 647-292-5757 647-292-5757
6: ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਬੇਫਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓ ਬੇਫਿਕਰ
7: ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬੇਫਿਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੱਗਰ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪਲਾਨਸ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ RESP ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਹੋ ਬੇਫਿਕਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੱਗਰ ਨੂੰ 647-765-2340 647-765-2340
8: You're listening to Gumtaz Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

लो जी, मैं ना चलो खालसा कॉलेज गुरु गुरु सर सुधार पिकनिक भी हैगी है, हैगी 5 जुलाई नू संडे वाले दिन। सो ये मिसी सागा दे विच हैगी जी, 1081 ओल्ड डेयरी रोड। तो ये आपां जानकारी फिर भी दे सकदे आ ते सारे उत्थे पहुंच सकदे आ जी। ते ये जे तुसी ज्यादा जानकारी लेनी हुण 647-470-2570 नंबर है, केवल सिंह हीरा जी का नंबर है, 647-470-2570। ते लो जी, मैं ना थोड़ा जा घड़ी बारे जानकारी देवां। देखो अपना ना महाराजा रणजीत सिंह जी की गलबात करते हैं। सो धुप घड़ी, सन कलॉक जिन्हों कहें, ये श्री दरबार साहब के लगी हुई है धुप घड़ी। देखी तुसी कभी किसी ने? देखो किसी का थोड़ा मैनू कॉल आई नहीं, पता नहीं किसी ने देखी है कि नहीं देखी। वैसे मैनू लगता नहीं भी नहीं देखी होगी। सो ये श्री दरबार साहब के धुप घड़ी जी लगी हुई है जी। तो यह महाराजा रणजीत सिंह जी के समय लगी है, ये महाराजा रणजीत सिंह जी के समय लगी है। जे आप गल करिए ना, भी उस समय पता नहीं कुछ होंगे नहीं सी, नो उस समय भी बड़े इनवेंशनस होंदिया सगिया। सो ये जड़ी घड़ी बनाई सी, ये पता किने बनाई सी? ये सिख सम्राज समय एक प्रसिद्ध इंजीनियर सिगा, स्कॉलर आप कह सकते हैं, एस्ट्रोनमर कह सकते हैं। एस्ट्रोनमर होंगे जो एस्ट्रोनमी की एजुकेशन लेंदे आ या उदे बारे जानकारी रखते हैं या खोजा करते हैं, जिन्हों आप पंजाबी दे विच कह देने हैं खगोल विज्ञानी। सो उसने यह धुप घड़ी बनाई सी, जिहड़ी कि धुप जदों हुंदी है ना उदों आपां नूं समां दसदी है। क्योंकि पुराने समय च जिवें घड़ियां तां सी नहीं उंज, है ना। सो बाकी हौली हौली आईयां, पहलां पहलां तां लोक जिवें धुप की रोशनी नाल ही देखदे सी वी हाँ हुण सवेर हो गई, हुण इन्ना क टाइम हो गया, हुण इन्ना क हो गया, हुण दुपहर हो गई, हुण शाम होण वाली है। हाँ, सो ये धुप घड़ी बनाई सीगी ते उहने फिर महाराजा रणजीत सिंह नूं भेंट कीती सीगी। ते महाराजा रणजीत सिंह ने फिर यह घड़ी की कीती, श्री दरबार साहिब दे विच भेंट कर दिती। देख लो तुसी कि वह अपने कोल कोई चीज़ रखते नहीं सी, बड़ा घट हुंदा है अपने कोल कोई चीज़ हुंदी आपां कहिंदे हाय हाय मैं नहीं देनी अपनी चीज़ किसी नूं, है या मैनू किसी ने प्रेजेंट की है। तो उन्होंने प्रेजेंट की अपना महाराजा रणजीत सिंह नूं। और यह व्यक्ति पता कौन सी? इंजीनियर स्कॉलर एस्ट्रोनमर सरदार लहणा सिंह मजीठिया जिन्हें यह धुप घड़ी सन कलॉक बनाई सी। सो यह सन कलॉक हुण श्री दरबार साहिब दे विच लगी हुई है, दर्शनी द्योड़ी तो जदों तुसी जाते हो ना हरिमंदर साहब नूं अंदर श्री दरबार साहिब दे विच मत्था टेकण वास्ते। सो यह मार्बल दी स्टोन है, उहदे ते यह घड़ी लगी हुई है, जो कि सूरज दी रोशनी दे नाल समा दसदी है कि किन्ना समा हो गया। वह ते अंकित किते होया 1 2 3 4 5 6 इदां, फिर जिथे वह रोशनी जाती है उन्ना टाइम होया हुआ हुंदा। सो एग्जैक्ट हुंदा, असी जिन्नी बार भी गए हैं जरूर दर्शन किते हैं, ते वो एग्जैक्ट समा दसदी भी हाँ इन्ना टाइम हो गया। सो एक घड़ी होर लगी हुई है उत्थे, वो केड़ी घड़ी है? अज समा नहीं है। सो मैं जरूर दसूंगी वो बारे भी। सो मेरा नंबर तुसी नोट कर लो जी, हुण समा हो गया मेरे नाल कोई भी गलबात करनी, कोई इंश्योरेंस की नीड है थोड़ू या तुसी बिजनेस नूं प्रमोट करना, मेरा नंबर 647-765-2340 6477-65-2340। थोड़ा दिन होवे वधिया, मिलते हैं जी कल नूं, सत श्री अकाल।

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap
2: This is AM 530 CHLO AM serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: IPL चल रहा है only on Karo Stream. Watch successful IPL season only on Karo Stream. www.karostream.com or call 905-204-1313.
1: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी ब्रैम्पटन निवासियां ले खुशखबरी हुण जदों भी तुसी कैनेडियन इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीआं चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ चाहे 15 फैंडोवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्क ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड ते हुण चौथी नवीं लोकेशन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 905-456-9900
2: आज दे समय विच हर मापे दी इहो इच्छा है कि मेरा बच्चा पढ़ाई विच भी अग्गे होवे ते अपनियां जड़ां अपने संस्कारां ते अपनी पछाण नाल भी जुड़िया रहे इस सुपने नूं साकार कर रहा है गोविंद सरवर स्कूल साडा मनना है कि असल सिक्ख्या ओ है जो बच्चे दे दिमाग नूं ज्ञान दिल नूं संस्कार अते जीवन नूं मकसद देवे बेहद खूबसूरत जिंदगियां बनाउण लई वचनबद्ध है गोविंद सरवर स्कूल गोविंद सरवर ब्रैम्पटन दी नवी लोकेशन आ रही है कॉर्नर ऑफ एयरपोर्ट रोड एट क्वीन स्ट्रीट जेके तो ग्रेड 10 तक रजिस्ट्रेशन करने लई संपर्क करो 905-458-6222
3: भाई ट्रक तो हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां
4: ओ इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ
5: ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेख नूं कॉल कर ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं
6: जी हां जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड है तो तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेथन एवेन्यू ब्रैम्पटन कॉल विल सेखो 416-819-6000
7: Hi, this is Harpreet Singh from Top 10.

0: Talk530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM
1: 530.
2: 32, 55, 80.
1: 93. एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने
2: हो काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
3: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
4: मस्कोका अंदर 1.5 एकड़ ते 2600 स्क्वायर फुट दी कॉटेज सेल ते आई है 3 बेडरूम 2.5 वॉशरूम हन हाई एंड दे फर्नीचर नाल फुली फर्निश्ड है $30,000 दा जनरेटर अते 14x14 फीट दा पैड भी बनया है 2 साल दी नवी कॉटेज $100,000 दी इनकम जनरेट करदी है 12x30 फुट दा डेक है प्लस वॉकआउट बेसमेंट भी है मस्कोका रूम भी फर्निश कीता गया है पीछे पानी है अते खूबसूरत है क्लब हाउस बन रहा है जिथे स्विमिंग पूल भी होवेगा बीच भी नजदीक है जानकारी लिए कॉल जितेंद्र गंदम 416-265-2222 416-265-2222
0: This is AM 530

गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डीप टाला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं थोड़ा अज का दिन अच्छा गुजरा होगा। साड़ी कोशिश रहेगी कि 2 बजे तक नैशनल इंटरनेशनल खबरों ना तुहानू जोड़ के रखिए। अगे चल के सुखी निजी साहब प्रोग्राम पेश करनगे वतनो दूर, सो स्टूडियो नाल जुड़े रहना। साडे स्टूडियो दे जिहड़े नंबर आ 2 बजे तक यही रहणगे 905-799-0999-799-0999।

0: 32 55 80
1: 98
0: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
1: काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
2: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
1: 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905-450-2828 905-450-2828
3: Illegal trucking is not just an industry problem. It puts our families and economy at risk. Rogue operators are putting untrained drivers behind the wheel. They dodge taxes, exploit vulnerable workers, and force honest carriers to pay the price. Join us in demanding real enforcement, real accountability, and real consequences for lawbreakers. Unsafe trucks don't stay in one province. They travel the highways that keep Canada moving. Brought to you by the Canadian Trucking Alliance's Stop Illegal Trucking campaign. Visit stopillegaltrucking.ca for details.
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
5: ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਰਗਾ ਮੱਖਿਓ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸੌ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਹੋਲੀ ਵਰਗਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿਊਜ਼ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਹੱਸ ਠੱਠੇ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ

0: हेलो एएम 5:30 तो तुसी सुन रहे हो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो
1: टुडे विच लाइव गलबात कर ली हुणे कॉल करो 905-564-6444
0: 905-564-6444
1: सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो चलो एएम 5:30 तो
2: कनाडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
3: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
4: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तो नू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
2: नाले जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुणे ही सिमराज सिंह सिद्धू नू कॉल करो 416-456-3381 416-457-3381

0: कमाल का कैच था यार, यकीन ही नहीं आ रहा।
1: तुम्हें इस पर यकीन नहीं आ रहा तो ये सुनो, सेव ऑन एनर्जी वाले मुफ्त इलेक्ट्रिक हीट पंप दे रहे हैं अगर तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक या ऑयल हीटिंग है।
0: इस बात पर मुझे पूरा यकीन है, वो तो इंस्टॉलेशन का 100% खर्चा भी खुद उठाते हैं। अगर तुम्हारे घर में ऑयल हीटिंग है तो वो ऑयल टैंक भी बिल्कुल मुफ्त बाहर निकाल कर देंगे, और हीट पंप से तुम्हारे हीटिंग बिल्स 50% तक कम हो सकते हैं।
1: तुम्हें ये सब कैसे पता?
0: क्योंकि मैंने भी पिछले साल ये लगवाया है।
1: अच्छा, वो क्या वेबसाइट थी?
0: saveonenergy.ca/eap
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.